0: देव बरें करूं बबिता बाय तुमचे सुबेत पावत आमच्या सकाळच्या काना मनाक पावले. आज आमच्या या दोरेबिफा कार्याक तुम्ही आईलात वरतो सुंतोस दादोस काय आणि तुमच्या काळजांत असली बोगणा सबार आमच्या लागी तुम्ही उसारली. परत बबिता बाय तुमकां हांव बरें आशेता उल्लास बरी जावन दी म्हणून आशेता. देव बरें करूं. देव बरें करूं.
1: देव बरें करूं.
2: कोंकणी संस्कृती
3: घुमटा नादाची
2: बँडा वचपाच
3: ओबिया वेरसाची
4: करलं संतान गे गे वरलो या साडयेचे
2: नाटक पोकणाची आणि विस्नार संगीताची
5: सांगत तुझो आशेदा
3: हाची जळक आणि वळख सदांच हाडण्याचा
2: रेडिओ सारंगसो कोंकणी प्रसार 107.8 FM ही रंगरंगाळची
6: रेडिओ सारंग ಈಗ ಆಪ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ.
7: கேட்டுள்ளார் இது ரேடி சாருங்கும் 07.8 FM. இது ரங்கு ரங்குரு ஜீவன முண்டியன்டுள்ளோ நானிங்களும் சேஃப் லக்குத்தார். ஸ்ரோத்ருங்கள இண்டத்தோ ரம்சான் சில்சிலா காரியக்கிரமத்தில் பேரிடோ ஹெரிய சாஹித்தி லேக்கக கவி பின சிந்தக்காயிட்டுள்ளோ கே பி அப்துல் காதர் குத்தெத்தூர் அயல்டோ நல்லத்தரு புக்கில் நின்றுத்து ஜீவனத்தை பிரதிபிம்பிசிரோ மானவியத்தை பின சௌஹார்தத்தை ஈ ஒரு எழுத்துங்க கேட்டுன்னு வருவா.